ये ना देखना गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल रखना कि उस ज़ात की हम नाफरमानी कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये इल्का किया, मेरे बंदों से ये कह दो, ये गुनाह करते वक़्त बाकी मखलूक से तो पर्दा कर लेते हैं और तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं जिनसे मखलूक देखती है, लेकिन उस दरवाज़े को बंद नहीं करते जिससे मैं रब देखता हूँ। क्या अपनी तरफ से देखने वालों में सबसे कम दर्जा मुझे समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आम तौर पर बुज़ुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने गुनाहों से बचने के लिए बंदों को, मखलूक को, अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को जो रास्ते बताए, उनमें से एक ये भी कि बंदा अपने आप पर जफा न किया करे, अपने आप से बेवफाई न किया करे। और किसी ने पूछा, बेवफाई से मुराद क्या है? वो फरमाने लगे, बेवफाई तीन तरह की होती है। एक अल्लाह ताला से बेवफाई, एक अल्लाह ताला के बंदों से बेवफाई, और एक अपने आप से बेवफाई। फिर वजाहत करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वही हमें रिज़क अता फरमाता है और दुनिया की हर नेमत हमें अता करता है। अगर हम उसका दिया हुआ खाकर किसी और को उसके साथ शरीक बनाएंगे तो ये अल्लाह ताला के साथ बेवफाई है। फिर फरमाया कि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना मखलूक के साथ बेवफाई है, इसलिए मखलूक का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना, गुनाह करना अपने आप के साथ बेवफाई है, इसलिए कि इस तरह इंसान अपने आप को दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई और क़यामत के दिन जहन्नम में जाने के काबिल बना लेता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिन लोगों ने अपने आप को गुनाहों की इस दलदल में डाल लिया, उनकी दुनिया भी तबाह और आखरत भी तबाह हो जाती है।